ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यदायंत योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वद्धि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम्।

0: हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती है, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं, कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुदेव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानी भूतानी आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनुपश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है। कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है, कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव माधवानंद जी महाराज जी कहते थे, सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ईशावास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्य स्वीदनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कह जाती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my okay
2: in America,
1: okay,
2: to Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation Austria or India? Okay. India. Yoga and Daily Life
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life
1: Yoga in Daily Life
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji, Swamiji, DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: Did I say?
2: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, विश्व शांति नेपाल के लिए। तो ब्रह्म ऋषि जी आइए आप, एंड प्लीज सिंग वन भजन दर्द दुख दूर हो जाए, दया हो जाए। मिश्री लाल जी ब्रह्म ऋषि पी थावला नागौर
1: नागौर दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताइए वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बने क्या, और वो भी भारत खंड के अंदर बने क्या। 84 लाख जोन में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोन है। 4 लाख मान का जोन के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता है ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनकी शरण में आया हूं क्या। तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता है, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 82-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि महाराज श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में।

अरे आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। क्या

करे। प्रार्थना कौन सी? अब तो पहुंचा चौथी धामा, सब संता का सरिया कामा, बेखरी मध्यमा पसंती और परा। परा से जो प्रार्थना होगी उसमें हमारी वहां पर हाजिरी होगी, उसमें हमारी सुनवाई होगी। महाराज धीरे के साथ प्रार्थना करो परमात्मा के सामने, हे प्रभु ये जो संकट आया है आगे ऐसा संकट इस पृथ्वी पर नहीं आवे क्या। जब परमात्मा की कृपा होगी

श्री श्री देवपुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

प्रभो जी साक्षी सुदयात्मा। दर ध्यान सो हम मुनि मोहन सुख रूप से जा ध्यात्मा प्रभु सुख।

0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: विश्वगुरु महामान्य स्वामी
1: गुरुदेव की जय।

भगवान की। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। सत्य सनातन धर्म की जय।

श्रद्धा विश्वास मेरा कम नहीं होवे। ओ लॉर्ड, माय श्रद्धा, माय कॉन्फिडेंस, माय फेथ, माय फेथ एंड माय कॉन्फिडेंस इज वेरी लिटिल डिफरेंट, शुड नॉट रिड्यूस, शुड नॉट डिम, बट दिन दिन दूना बढ़ता रही जो, डे बाय डे मोर एंड मोर शुड इंक्रीज श्रद्धा। सो सत्संग, हरि कथा एंड श्रद्धा, ईश्वर भजन एंड द फोर्थ नवदा भक्ति ऑफ नारदा, ईश्वर भजन। ईश्वर द गॉड, भजन मीन्स सिंग द नेम ऑफ गॉड, रिपीट योर मंत्रा, मेडिटेट ऑन द गॉड, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, गॉड इज गॉड। डजंट मैटर इफ समवन ब्लेम्स, लेट देम ब्लेम, समवन डजंट लाइक द सन and takes the dust full of the hand and throws the dust to the sun, what happens? It will fall on him. It will not come to the Lord. Once someone was writing to Guruji, Holy Guruji, about Maheshwaranand something, and Holy Guruji wrote back, if someone throws the dust to the sun, will fall on them. Who is blaming Maheshwaranand, this karma will go back to them. And it happened. So, Ishwar Bhajan, God is God. Because you don't like that God, or you don't like me and you don't believe my God, and I don't like you so that I don't believe your God. This is problem between you and me, not in between God and us. That's it. Therefore, God is God. Ishwar Bhajan, think of God.

ही रहे सुखी आरी रे, ओम की रचना सारी रे, ओम की रचना सारी रे। एवरीथिंग ऑल व्हाट इज विजिबल अनविजिबल हियरिंग टेस्टिंग फीलिंग ऑल दिस इज ओनली फ्रॉम वन फ्रॉम द ओम द साउंड ओम इज द क्रिएटर ओम इज द होल यूनिवर्स द साउंड दैट हैज ओम हैज नथिंग नो फॉर्म टू सी निराकार निराकार हैज नो आकार ज्ञानी जाने वेद सोही रहे सुखियारी रे दोज वाइज पीपुल हैव अंडरस्टूड द ओम देर विल बी ऑलवेज हैप्पी सुखी बिकॉज दे विल नो वाट इज द ओम ओमकार पर ब्रह्म रूप है ओमकार इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ इज द फॉर्म ऑफ द ओम देन इट इज द ब्रह्म ऑनली ब्रह्म इट हैज नो फॉर्म नथिंग entire universe all the highest of the highest brahma you can say different name if you want to say it in christianity you can say the holy father I don't know if it is that muslim said highest is allah nothing is else yeah so the gandhi wrote one very nice song ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर एंड अल्लाह इज दाई नेम ओ लॉर्ड गिव गुड थॉट्स टू एवरीबॉडी हु से दैट गांधी जी ओम की छाया नहीं धूप है ओमकार सब रूप सदा ही ओमकार हैव नो शैडो इफ यू सी द शैडो Then from whom is the shadow? Therefore, it is a no shadow. So, Omkar have no, nahi chaya, nahi dhoop hai, neither the sun. No light. Because light should be from someone. So, that is a nirakar. So, neither the shadow, neither सनलाइट ओमकार नभ रूप सदा ही एंड ओमकार नभ रूप सदा ही नभ इज द स्काई दैट इज द ओम ऑल द टाइम्स ओनली ए वेरी क्लियर स्काई ओनली नो ऑब्स्टिकल देयर इज नो एनी Even the clouds are nothing. Pure Nabarupa. That's called Nabarupa. What is your form? What is your Atma? My Atma is in Nabarupa. Just like all. And where will you? How big are you? What is your color? Go into the Nabha and you will see endless and endless this Atma. Rosumis, understand? No. Who did not understand? What is a nabha? Sky. Empty sky, everything. That is thy Atma, thyself. That is the Om. Omkara nabha rupa sadahi he nira dharire. That one, Om is not based on anything.
It is not that we are sitting on the earth. But Omkar has no any base. It is everywhere, equal and same. All is existing in that, but he is in no ones. So is he with all and no one is all. Om, Om, Om. Omkar ki Trigun Maya. ओमकार की त्रिगुण माया, देर इज थ्री गुणास, विच वन? सत्व, राजस एंड तामस. सो ओमकार की त्रिगुण माया, दिस इज अ माया ऑफ द ओमकारा, बिकॉज इन दिस एवरीथिंग इज हैपनिंग. सो but also is a, you cannot touch, you cannot hold, you cannot. So sattva, rajas and tamas, this all entering in our body, then you will see how, what it is happening. Omkar mein jeev rahe sab omkar. ओमकार में जीव रहे सब देहधारी रे. इन दैट ओमकार लिविंग ऑल द सॉल, ऑल जीवास एंड ऑल हु हैव बॉडी, दे आर इन द ओम. इवनिंग वी विल डू कंटिन्यूली. ओके, सो अगेन come to the Brahmari. How many times? 15. Okay? Without movements. No movements. Deep inhale. Not moving.

0: Panchaman de aero, the soup.
1: It's there.
0: थोड़ा सा जल से अभिसिंचन कर दीजिए कुंड के अंदर, थोड़ा सा जल से। ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो मणिवाल साश्विन श्वेता श्वेताक्ष वर्ण से रुद्राय शुद्धे प्रणाजामा अवलिप्ता रुद्र अनुपा अपार जन्या। जो ये लोग बैठे हुए हैं इन सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल, और जो पूजन की जो सामग्री है इसमें थोड़ा थोड़ा जल पुष्प से लेकर के सभी जगह चढ़ा दीजिए। आप सर्व देवानाम भवे
1: क्या
0: मुखमिया सर्व देवानाम भवे भुक्त विभुक्त तथा पितृणाम नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। इस श्लोक में बताया गया है कि अग्नि देवता कैसे हैं। चत्वारि श्रृंगा, उनके जो अग्नि देव हैं उसमें उनके चार सिंह हैं। त्रयो अस्य पादा, उनके तीन पैर हैं।

0: is said in the shastras that he has char kya hai?
1: Pair, char string hai
0: unke. Singh ya sir?
1: String, sir.
0: Four, not string, it's a Sanskrit word for heads. So it is said in this mantra that fire god has four heads.
1: Trayo asya pada, teen pair hai unke.
0: Three legs.
1: द्वे शेर से दो जो हैं उनके सर हैं
0: तो चार क्या थे पहले
1: सींग नहीं होते हैं सींग
0: ओके फोर हॉर्न्स थ्री लेग्स एंड टू हेड्स
1: सात हाथ हैं उनके
0: सेवन हैंड्स
1: और सात ही जिह्वाएं हैं
0: एंड सेवन टंग्स
1: जिससे वो हवन ग्रहण करते हैं
0: विद व्हिच ही रिसीव्स व्हाट वी ऑफर हिम
1: वो महादेव के बहुत ही ज्यादा अनंत प्रिय हैं
0: एंड ही इज वेरी लव्ड बाय महादेव शिवजी
1: ऐसे जो अग्निदेव हैं उनको हम प्रणाम करते हैं
0: एंड टू दैट अग्निदेव टू दैट फायर लॉर्ड वी मेक प्रणाम
1: और वो हमारे जो हम भी हवन कर रहे हैं तो उसमें जो गलतियां हुई हो गलतियां हो उन्हें क्षमा कर हमें हम जो भी प्राप्त हुई जो हमारी वस्तुएं हैं उनको स्वीकार करें
0: एंड वी आर We are, praying to, we are praying to Agnidev, to Fire Lord, that whatever mistakes in chanting or in offering we will do in this Yajna, we are asking for forgiveness and whatever we can with our Shakti, Bhakti, Vairagya, whatever we are offering, please accept it and fulfill all our wishes which we asked you for.
1: जो पांच तत्व हैं उन पांच तत्वों से हम सारी चीजें ले रहे हैं जैसे वायु है तो वायु से हम सांस ले रहे हैं
0: from
1: जल
0: all
1: से
0: the five
1: जल ले
0: tattvas,
1: रहे हैं
0: we are taking something from the air wind we are taking breathing from water we are drinking water
1: तो जो पांच तत्व हैं उन सभी पांच तत्वों को प्रणाम करके उन सभी को ये निवेदित है
0: and whatever we are offering we are also offering them
1: आगे प्रारंभ करते हैं हवन की प्रक्रिया थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेकर के ध्यान करना है नवग्रह जो देवता है
0: वी आर डूइंग ध्याना वी आर मेडिटेटिंग टू ऑल द नाइन ग्रह नाइन प्लैनेट्स
1: प्लैनेट्स ओम आकृष्ण सावर्तमान और निवेश
0: बैक एंड लेट इट बी लेटर वी विल क्लीन अप द मेस
1: क्योंकि भगवान के दो पुत्र हैं धर्म और अधर्म भगवान के धर्म सामने तरफ रहते हैं और अधर्म पीछे रहते हैं
0: There are two sons of God. One is dharma and one is adharma. Dharma is in front and adharma is in the back.
1: तो दोनों को आहुति मिलती है जो अग्नि के अंदर जो आहुति जाती है वो धर्म लेते हैं और अधर्म को जो पुण्य के बाहर जाती है वो अधर्म
0: So the thing which is going in the fire is for dharma and those which is just falling out is going to adharma. So that both sons can fulfill that.
1: प्रयास ये रहे कि हम अंदर ही डालें जिससे धर्म की वृद्धि हो और हमारे गुरुजन जो स्वस्थ हैं
0: and we should try that it goes more inside but that it goes for dharma and less for adharma but if it goes out it's okay
1: ठीक है आगे प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे ओम गुरुव स्वाहा गणेशाय स्वाहा
0: स्वाहा
1: एक कटोरी में जल लेकर के सामने रख लीजिए आप चारों दिशा थोड़ा थोड़ा वहीं से बैठे बैठे अहिरी अब हो गई है पजेति बाहुन जाया है किन परिवाद मानो हस्तों में विश्वा भाई उन्होंने भी मान तुमागु संपर्पाति विश्वता द्रव्य दक्षिणा इसलिए हम चढ़ाए चढ़ाते हैं कदाचित जैसे जो हम सामग्री लेकर के आते हैं उसमें जो दोष हो अथवा उसके अतिरिक्त जो भगवान को प्रिय हो तो वह उससे उसकी पूर्ति हो जाती
0: The reason why we offer dakshina or money is because if we couldn't find something or there was some shortage in any type of samagri offerings or things that we bought then that covers that in that way
1: kyunki pehle jo dakshina hoti thi wo dhatu ki hoti thi
0: because in the olden times
1: jaise sona chandi
0: in the olden times the way of dakshina used to be any type of metal like gold and silver because that was pure but nowadays we don't have that so we use money I mean we have it but we don't want
1: to uske hisab se hum yahi netaon ko pranam karke थोड़ा सा अक्षत लेकर के जो भी आपने देवी देवताओं को बुलाया है उनसे प्रार्थना करने हैं, आपके आवाहन पूजन में हमसे जो गलती हुई हो, जो कम अथवा ज्यादा जो सामग्री चढ़ गई हो, उन्हें क्षमा करके हमारे जो गुरु जी हैं उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, और हमारे जो भी विश्व में जो भी हमारे शिष्य इत्यादि हैं उनको उत्तर उत्तर वृद्धि देने की कृपा करें, इनको सबको समझा दीजिए।
0: Now, whatever we chanted or if we did any mistakes, we will ask for forgiveness from Gurudev, from Fire God, from Shivji, from everyone, and we will pray that all the world is remaining in peace and unity, good health for Swamiji, and whichever wish you ask for in your inner minds when taking the Sankalpa, that they come true. We are going to pray for that. Papoham papa karma ham papatma papatma papa samavam trai mam parvati natha sarva papa haro hara mantra hinam kriya hinam bhakti hinam sureshwaram yat pujita maya deva paripurnam tadastume aparanam na janami tavarjanam pujam cheva na janami kshamyatam parameshwaram
1: yantu deva gana sarve pujam adaya mamakim उदासन ब्रह्मादय सर्वे तत्र गच्छ उदासन पूर्वस्व सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो।

0: Sridip Naran Bhagwan ki jai, Shri Satguru Deva ki jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरत है।

0: की जय।
1: श्री सतगुरु स्वामी माधवानंद गुरुदेव
0: की जय।
1: विश्व गुरु महामंद्रेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव
0: की जय।
1: श्री अलकपुरी सिद्ध परंपरा की जय।

भगवान की जय। सुदेव पुरुष महादेव की जय। स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय। श्री अलकापुरुष महादेव की जय।

0: हरियाम भगवान की जय। श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव की जय हो।
1: जुगा जुगा

ॐ श्री दीपनारायण भगवान की जय श्री श्री देवेश्वर महादेव की जय श्री सत्यगुरुदेव की जय

0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: विश्वगुरु महामान्य स्वामी
1: गुरुदेव की जय।

की आराधी भगवान दीप नारायण भगवान की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय।